0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: अजकान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से संगीत है सोहेल सेन का बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है

टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टाइम भूल जाओगे। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका भी बच्चा तुम्हारा फैन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला भंडा तो है।